भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसीशहर नगरपालिका साथ भलुआटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मेती 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल, छोरा बुहारी।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मिति 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी ज्वाइँहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाइँ नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजु अदिति पलातिनीहरू आधे र आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।

भोगो कि मेरे मोड़ी कोई पसाओ देना ट्राई नहीं ना करा बट सीरियसली मेरे लाई बोली दी नहीं मैं एकदम कम सा इनफैक्ट भन्न पड़ता कोई बन जाए ना।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारा प्रात स्मरणीय बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार निवासी बामदेव पौडेल को 73 वर्ष को उमेर में मेटी 2083 साल असोज 14 गते बुधवार का दिन असामयिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। श्रीमती माया देवी पौडेल छोरा बुहारी विश्व पौडेल र रीता पौडेल छोरी जयहरू इन्द्र सुवेदी र लवहरी सुवेदी शोभा अधिकारी र पदम अधिकारी प्रतीक्षा सुवेदी र सन्तोष सुवेदी नाति नातिनी बुहारी विशाल पौडेल र शीतल पौडेल नातिनी ज्वाई नाति अमृता अधिकारी र प्रकाश अधिकारी नातिहरू नयन आदित्य पवन नातिनीहरू आरजू अदिति पलातिनीहरू आर्य आज्ञा भाउजू चीजा माया पौडेल दाजु भाउजू पदम प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल भाई बुहारी कृष्ण प्रसाद पौडेल र हरिमाया पौडेल यादव पौडेल र चीजा पौडेल खडानन्द पौडेल र देवी पौडेल एवं समस्त पौडेल परिवार बेसी शहर नगरपालिका साथ भलुवाटार लमजुङ।

0: చూపించాలి.
1: సున్నమ్మి సున్నత వేరే వేరే సున్నవి పని వన్న పొజకు క్యో వన్న
0: అరుత క్యూ అని సుంతలి చమెలి ఆయుద్యా చమెలి
1: అయిన కు చమెలి వరే
0: కో చమెలి వనని ఉయి క్యా బరాలి భాజీకి ఠూ చెరి చిన్నస
1: ए होइन ऊ त किजाती रोग लागेर बिरामी भइसकेको भन्ने सुनेकी थिए त
0: त्यही त त्यस्तो ठाउँमा गएर त्यस्तो भनेर सुन्न पनि लाज मर्दो रोग लिएर पनि कुन नाकले गाउँमा फर्किएको अरे
1: हो त नि मर्न लाग्यो कि आमा बालक र भाइ बहिनीलाई छोडेर के गर्न गर्छु भन्दै गएको न कति अहिले लुरु लुरु त्यही घरमा कसरी आउन सकेको होला कुनै म भए त के आउन सक्छु होइन त चम्पा
0: म त आउन सक्छु म त म नै आउन सक्छु त्यही त हो लाज पर्ने सबै बजेपछि
1: हेर्न दुई साल पहिले मसँग 500 रुपियाँ लिएर गएकी थिएँ दिने वास्तै गर्दिनँ अब अहिले माग्न जाऊ भने किस्तले दिएको पैसा कसरी लिने
0: हेर सुन्तली त्यो जाबु 500 आश गर्दा आफूलाई पनि ज्यानमा र रोग लाग्ला भने डर छोड्दै त्यो पैसा पैसा मेरो माथि काट्यो भने चाहिँ त्यसैलाई ओखति गर्न खोज गरु ल त है सुन्तली म त लागे
1: हुन्छ हुन्छ म पनि लागेँ